0: दस छैसठी एक सय पैसठी।
1: सामुदायिक पहुँचका लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज।

0: रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज।
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलो सामुदायिक एफएम बैलेमी थोप्लो सात मेगा हर्जबाट म पद्र प्रसाद सापकोटा आज विक्रम सम्बत 2083 साल भाद्र कृष्ण पक्ष सन 2026 सेप्टेम्बर 2 तारीख भाद्र 17 गते बुधबार षष्ठी तिथि अब स्तुति गरौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पे भरी।